किताबी के अंदर गुरु उन्होंने वाला कभी नहीं किया है बड़ी बार Yeah.